0: ये ही करते हुए
1: मुरागे दिन जे कंजूसियन जो रहा सी बिंग्यास तक नहीं ये बा जिंदा से तो शोधिंग को सी
0: जोयें सिंह दे थागे शबो शांसे का जो नहीं योज बे
2: किरान के आचा लाल सोंग मारे लाकुनो ये मशान रो किरान ये पाल गेंद चुनो याकु यो मारे
0: ये शेष ये ने दिसा दुने दियो सोंग सा सोचां चंचल के थाग जो नहीं पचेरो
2: तोल देव ना ये चातुन डाले आ चिरे
0: जग मसा शांग न्योर सुस
1: शांगडा
2: शुओ
3: लिबो वंस ये दियो हम सासे दो चीजे गुरिंग कुछ ने
4: 你老婆家里的孙夫瑞瑞斯基，什么纪念不读的？要的。龙兰我是第一下，第四周见那老李啊，三不起来通气。孙夫瑞冲出干了呀，也我接着外国了。李伯文给刚做的东家马里，通到徐松啊。
5: 我今年都有那个了，总监。我那老婆是三兄啊。李伯文是年的结账一位，帮拉定这里。今早给包东看不看小店去，昨晚给，没事来个是开门的。